एकला तुम्हारा इश्क भक्ति रचना आपने सुनी रेखा रायरी करके स्वर में। कार्यक्रम के अंत में अब सुनिए पंडित भीमसेन जोशी के स्वर में संत कान्हो पत्रा की रचना।

ರಾಗ ಛಾಯೆ ಬರುವಂತಹ ಸ್ವರಗಳು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ಹಾಡಿ.

म्यूजिक चैनल अमृतवर्षिणी एफएम फ्रीक्वेंसी 100.1 मेगाहर्ट्ज़। डियर लिसनर्स, लेट अस लिसन टू अ कर्नाटिक क्लासिकल म्यूजिक बाय द स्टाफ आर्टिस्ट्स ऑफ आकाशवाणी एंड इंस्ट्रूमेंटल एंसेंबल। इन द बिगिनिंग भुवनेश्वरिया सेट टू मोहन कल्याणी राग एंड आदिताल रिटन बाय मुत्तैया भागवतर।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं राग जौनपुरी में सरोद वादन. आपके कलाकार हैं अनिर्बान बंदोपाध्याय. आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं तरुण रॉय. तो ये सुनते हैं राग जौनपुरी में सरोद वादन, कलाकार अनिर्बान बंदोपाध्याय.
2: दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक. दिस मॉर्निंग वी प्रेजेंट अ हिंदुस्तानी इंस्ट्रूमेंटल रिसाइटल फॉलोड बाय अ हिंदुस्तानी वोकल रिसाइटल. लिसन टू अ सरोद रिसाइटल इन राग जौनपुरी. आवर आर्टिस्ट इज Anirban Banerjee. Accompanying our artist on the tabla is Tarun Roy. Listen to a sarod recital in the rag Jaunpuri. Our artist, Anirban Banerjee.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग जौनपुरी में सरोद वादन सुन रहे थे। कलाकार थे अनिर्बान बंद्योपाध्याय। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे तरुण रॉय। ये है रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। कार्यक्रम को जारी रखते हुए हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अब हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं राग गुर्जरी तोड़ी में ख्याल। आज ही कलाकार हैं वर्णाली चट्टोपाध्याय। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं देवाशीष सरकार। तो आइए सुनते हैं राग गुर्जरी तोड़ी में ख्याल गायन, कलाकार वर्णाली चट्टोपाध्याय।
1: You were listening to a Sarod recital in Rag Jaunpuri. Our artist was Anirban Banerjee. Accompanying him on the tabla was Tarun Roy. This is Ragam 24/7 on DTH, anytime Indian music. Continuing the concert, we now present a Hindustani vocal recital. Listen to a khayal in Rag Gurjari Todi. Our artist is Varnali Chatterjee. Accompanying her on the tabla is Devashish Sarkar and on the harmonium is Jayant Pandey. Listen to a khayal.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आइए सुनते हैं राजा काड़े का गायन. प्रस्तुत है राग पुरिया. मध्यलय ख्याल झपताल में निबद्ध है. बोल है अब तारो बिन कौन मोरी राखे लाज. द्रुत ख्याल तीन ताल में निबद्ध है. बोल है श्याम कुंवर मोरे घर आए. इन द प्रोग्राम ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक वी प्रेजेंट वोकल रिसाइटल बाय राजा काड़े. ही प्रेजेंट्स राग पुरिया. मध्यलय ख्याल सेट टू झपताल. बोल अब तारो बिन कौन मोरी राखे लाज. द्रुत ख्याल सेट टू तीन ताल. बोल श्याम कुंवर मोरे घर आए.

यह है रागम डीटीएच चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत। आप सुन रहे थे राजा काळे का गाया राग पुरिया। उन्हें तबले पर संगति कर रहे थे शंतनु किंजवड़ेकर, वॉयलिन पर संगति कर रहे थे कैलाश पात्रा तथा हारमोनियम पर संगति कर रहे थे प्रकाश वगड़। अपना गायन जारी रखते हुए राजा काळे अब प्रस्तुत कर रहे हैं राग छायानट। विलंबित ख्याल एक ताल में निबद्ध है, बोल है करत जो मोसे नेहा की झूठी बतिया, द्रुत ख्याल

ये था राग छायानट। आप सुन रहे थे राजा काळे का शास्त्रीय गायन। उन्हें तबले पर संगति कर रहे थे नीलेश यादव तथा हारमोनियम पर संगति कर रहे थे श्रीनिवास आचार्य। ये आकाशवाणी मुंबई की प्रस्तुति थी। ये है रागम डीटीएच चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत। दैट वॉज राग छायानट। यू वेर लिसनिंग टू वोकल रिसाइटल बाय राजा काळे। ही वॉज अकंपनीड ऑन तबला बाय नीलेश जाधव एंड ऑन हारमोनियम बाय श्रीनिवास आचार्य। दिस वॉज अ कॉन्ट्रीब्यूशन बाय ऑल इंडिया रेडियो मुंबई। दिस इज रागम डीटीएच चैनल, एनी टाइम इंडियन म्यूजिक।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है अभय रुस्तम सोपोरी का संतूर पर बजाया राग विभास. तबले पर आपकी संगति की है उस्ताद अकरम खाने.
2: This is the Ragam channel of All India Radio. We now have for you a santoor recital presented by Abhay Rustam Sopore. He first presents Rag Vibhas. He is accompanied on the tabla by Ustad Akram Khan.

0: अभी आप अभय रुस्तम सोपोरी का संतूर पर बजाया राग इभास सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी उस्ताद अकरम खाने। और लीजिए अब सुनिए राग भूपेश्वरी। तबले पर आपकी संगति की है उस्ताद अकरम खाने।
1: यू जस्ट हर्ड राग विभास कंटिन्यूइंग विथ हिज संतूर रिसाइटल। अभय रुस्तम सोपोरी नाउ प्रेजेंट्स राग भूपेश्वरी।

0: अभिया अभय रुस्तम सोपोरी का संतूर पर बजाया राग भूपेश्वरी सुन रहे थे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: विद राग भूपेश्वरी वी कम टू द एंड ऑफ द संतूर रिसाइटल प्रेजेंटेड बाय अभय रुस्तम सोपोरी। ही वॉज अकम्पनीड ऑन द तबला बाय उस्ताद अक्रम खान। दिस प्रोग्राम वॉज अ प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली।

0: In the special program of Great Masters of Indian Music, you were listening to a Sarod recital by Ustad Baba Alauddin Khan. Now listen to an interview with Ahmad Jan Tirakwa. Interviewer, Mujahid Niazi.
1: आदाब जय तिरकवा साहब.
2: आदाब.
1: आइए तशरीफ रखिए.
2: हाजिर.
1: आपके नाम से तो कौन है जो वाकिफ नहीं है. अहमद जान खान तिरकवा का नाम तो मशहूर है. भारतीय संगीत में आपका अपना एक स्थान है.
2: मेहरबानी है आपकी नवाज.
1: आज आप तशरीफ लाए हैं तो अगर आप इजाज़त दें तो कुछ थोड़ी बहुत बातें आपसे पूछ लें.
2: ज़रूर.
1: सबसे पहले तो साहब ये बताइए कि आपको तबला बजाने का शौक कैसे हुआ और कब हुआ.
2: बचपन में मुझे गाने का सबक हुआ था.
1: अच्छा.
2: मगर मेरी तबीयत रुझान इधर ही था बचपन में तबले की तरफ. बुजुर्गों ने कहा तो मैंने तबले पे डाल दो.
1: अच्छा. तो शुरू में क्या आपको गाने की तालीम
2: जी.
1: अच्छा. और उसके बाद फिर जब आपकी तबीयत का रुझान उधर देखा तो तबले की तालीम.
2: मुझे वालिद ले गए बम्बई. वहाँ जाके मुनीर खान साहब से
1: जी
2: उनका शागिरद करवा दिया.
1: अच्छा. कितनी उम्र से आपने ये.
2: 12 बरस.
1: अच्छा उस्ताद आपको तो रियाज कराया जाता होगा और ये क्यों कर रियाज आप करते थे कितनी देर करते थे ये तो आप.
2: मैं बतलाता हूँ. पहले तो रियाज करते ही थे. मैं एक 9 बरस का चिल्ला लिया बुजुर्गों ने.
1: अच्छा.
2: 9 बरस तक मुझसे 20 घंटे 18 घंटे का चिल्ला करवाते थे.
1: वाह.
2: यानी मुझे 10 बजे तबले पर बिठाया
1: सुबह
2: तो 12-1 बजे छोड़वा दिया.
3: तो रात को शाम को 7 बजे 7 बजे तक
1: जी
3: 7 बजे फिर छोड़वा दिया
1: जी.
3: फिर 8 घंटे की मोहलत हुई तो 8 बजे फिर बिठाया मुझे
1: जी.
3: तो 2 बजे 8 घंटे को छोड़वा दिया.
1: अच्छा. 2 बजे रात.
3: जी हाँ. तो फिर 2:30 बजे से बैठा मैं तो सुबह 6 बजे तक.
1: अच्छा.
3: बजाता था फिर थक के मैं पस्त हो जाता था.
1: अच्छा. तो मतलब ये है कि 24 घंटे में सिर्फ आपको 4 घंटे आराम करने के खाना और
3: जी हाँ ये मिलते थे.
1: तो उस्ताद

0: में तो बड़ी मेहनत पड़ती होगी आपको 20 घंटे का रियाज 9 बरस तक।
1: जी हाँ।
0: तो इसके लिए तो कोई खास खुराक भी आप?
1: खुराक मेरे बुजुर्गों ने बादाम सुबह नहार कसरत करवा के मुझे और बादाम पिलाते थे
0: जी।
1: और पानी की जगह दूध।
0: अच्छा।
1: कभी पानी नहीं पीने दिया, खाने के वक्त एक गिलास मिलता था।
0: अच्छा।
1: नहीं तो दूध, जिस वक्त प्यास लगी रियाज में।
0: तो कितने चिल्ले आपने इस तरह के किए?
1: बस 9 साल किया।
0: अच्छा।
1: चिल्ला।
0: अच्छा उस्ताद ये तो बताइए कि आपके नाम अहमद जान खान के साथ ये थिरकवा क्यों लगाया जाता है? ये तो एक किस्म का खिताब मालूम होता है, क्या किसी ने आपको ये थिरकवा का खिताब दिया था?
1: जी हाँ, वो मेरे उस्ताद के जो वालिद थे
0: जी,
1: उन्होंने थिरकवा न्यू रखा नाम
0: जी।
1: क्या उन्होंने देखा कि अब इससे चैन ही नहीं है, थिरकता ही है।
0: अच्छा।
1: और लय में थिरकता है।
0: अच्छा। तो तभी
1: और जैसा जिसे देखा वैसे ही कहने लगे।
0: अच्छा।
1: बजाने लगे वैसा ही
0: जी।
1: तो लयदार बहुत था मैं बचपने में, और अब भी खुदा का करम है रुए रुए में लय है मेरे
0: जी। तो तभी से
1: मैं ये खुदा थिरकवा पड़ गया।
0: थिरकवा नाम से सब आपको जानते ही। क्या क्या नाम था आपका दादा उस्ताद का?
1: मेरे काले खान।
0: काले खान। अच्छा तबले में कितने घराने हैं और कितने घरानों के बाद मशहूर हैं, ये तो आप बताएं। तो
1: ज़रूर बताऊँ। फरक्काबादी
0: जी,
1: चलन
0: जी एक
1: वहाँ का, ये भी घराना है
0: जी।
1: नखलऊ का घराना
0: जी,
1: दिल्ली का घराना है
0: जी,
1: अजराले का घराना
0: है। तो फरक्काबाद, लखनऊ, दिल्ली, अजराला
1: जी।
0: और अगर आप मुनासिब समझें और तकलीफ ना हो तो एक एक छोटी छोटी मिसाल इन तमाम बाजों के दे के और जरा हाथ से भी अगर आप सुना दें तो बहुत ही नवाजिश होगी आपकी। तो पहले जरा दिल्ली का बाज मुंह से पढ़ के सुना दीजिए, उसके बाद
1: बेहतर है। धाती धागे ने धातल के तो धाती धागे, दिन आगे ने ताती धागे ने तातल के तो धाती धागे, दिन आगे ने धाती धागे ने धातल के धाती धागे, दिन आगे ने धाती धागे ने धातल के धाती धागे, दिन धाती धागे ने धातल के धाती धागे, दिन आगे ने धाती धागे दिन आगे ने धाती धागे दिन आगे ने धाती धागे ने धातल के धाती धागे, दिन आगे ने धाती धागे दिन आगे ने धाती धागे दिन आगे ने धा।
0: ये तो अब इसको आप हाथ से

0: ये था दिल्ली का बात,
1: दिल्ली का।
0: अच्छा, अब एक टुकड़ा पी अजाड़े का
1: बेहतर है।
0: अभी सुभाष से
1: बेहतर है।

0: अच्छा, ये तो उस्ताद था अजराड़ा
1: जी।
0: अब इसके मेरे ख्याल में फरखाबादी घराने का एक टुकड़ा कोई मिसाल पहले तो मुंह से पढ़ के आप सुनाएं।
1: अच्छा,
0: और उसके बाद फिर
1: बेहतर। धन धन ना ना धन धन ना धन धन ना ना धन धन ना
0: वाह, आइए अब हाथ सीसी को।
1: अच्छा।

0: ये तो था फरखाबादी
1: जी।
0: अब लखनऊ का बाज
1: के वो भी सुनिए, जी वो भी सुनिए।

0: उस्ताद, अपने घराने और अपने उस्ताद के अलावा आपको किसी और घराने की तबला भी तो पसंद आया होगा, मतलब किसी बुजुर्ग का तबला पसंद आया हो या उनका घराना?
1: घराने तो ये चार ही हैं, किसी मगर इन बुजुर्गों का मुझे बहुत सब मेरठ में मैंने खान साहब नन्ने खान को सुना, कूड़े वाले थे
0: जी,
1: बड़े मियाँ काले खां के शागिर्द थे, वो उस्ताद थे जलाल के, उनके शागिर्द थे नन्ने खां, बहुत अच्छा बजाते थे और बड़े रौनक थी हाथ में, और खास जो जलाल का चलन था वो बजाते थे।
0: अच्छा।
1: और दिल्ली में
0: जी
1: हाँ साहब नत्थू खां, दिल्ली मैंने उनसे अच्छी नहीं सुनी किसी से
0: जी,
1: जैसे वो बजाते थे, और जिन जो अदायगी उनसे होती थी मैंने नहीं सुनी अपनी उम्र में
0: जी। अच्छा, इन बुजुर्ग की खूबियाँ तो आप ही बता सकेंगे, क्या उनमें बाबत थी, क्या चीज थी?
1: बाबत ये थी उनमें कि जो जहाँ का बोल था
0: जी
1: वो वैसे ही निकालते थे
0: जी,
1: और जो पाव भर का वजन है तो पाव भर करके ले जाते थे, डेढ़ पा या पौन पा करके नहीं ले जाते, तो वो असलियत जो थी वो बात थी उनके हाथ में, ये अच्छी मालूम हुई।
0: उस्ताद, ये तो खैर मानी हुई चीज़ है कि पुरानी तालीम तो फिर पुरानी तालीम है ही, असली चीज़ है और बुनियाद उसी चीज़ की है, मगर आपको इतना अर्सा होगा, आपने खुद भी तो कोई नई बात पैदा की होगी तबले में, या आपने कोई बंदिश, आपने पुरानी बंदिशों के आधार पर कुछ की होगी, और एक दो मिसाल अगर आप दे सकें तो
1: जरूर ना सुनाऊं।
0: जी हाँ जरूर।
1: दार ना ना तिन ना करता दार करता देना करता कितना करता तोल करता इधर करता कितना करता कितना करता इधर करता कितना करता कितना करता इधर करता कितना करता कितना तारा तोल करता इधर करता कितना करता कितना करता इधर करता कितना करता कितना करता इधर करता कितना करता कितना तारा तोल करता इधर करता कितना करता कितना करता इधर करता कितना करता कितना करता इधर करता कितना करता कितना तारा।
0: वाह, अब

0: क्या कहने हैं उस्ताद, बहुत ही खूबसूरत बंदिश है। एक आध बंदिश अगर और
1: बहुत अच्छा। जी सुनो, मुंह से सुनाऊं पहले?
0: जी।
1: दिन दिन ना ना तिन तिन ना ना दिन लादिन दिन ना दिन दिन ना ना तिन तिन ना ना दिन देख रहे दाग रहे कितना कितना कितना कान ला दिन कितना कितना कितना
0: धाल कर धाल कर धाल कर धाल कर धाल कर धाल कर धाल कर धाल कर धाल कर धाल कर धाल कर धाल कर धाल कर धाल कर धाल कर धाल कर धाल कर धाल कर धाल कर धाल कर धाल कर धाल कर धाल कर धाल कर धाल कर धाल कर धाल कर धाल कर धाल कर धाल कर धाल कर धाल कर धाल कर धाल कर धाल कर धाल कर धाल कर धाल कर धाल कर धाल कर धाल कर धाल कर धाल कर धाल कर धाल कर धाल कर धाल कर धाल कर धाल कर धाल कर धाल कर धाल कर धाल कर धाल कर धाल कर धाल कर धाल कर धाल कर धाल कर धाल कर धाल कर धाल कर धाल कर धाल कर धाल कर धाल कर धाल कर धाल कर धाल कर धाल कर धाल कर धाल कर धाल कर धाल कर धाल कर धाल क

0: क्या कहने का, बहुत ही खूबसूरत बंदिश। उस्ताद आपने तो बहुत से जलसे भी सुने होंगे, अपने बचपन में भी बुजुर्गों को तबला बजाते सुना होगा, बड़े बड़े महफिलों में मजलिस देखी होगी, कोई ऐसा वाकया अगर आपको याद हो जो कि आपके दिमाग में अभी तक हो या आपको अभी तक याद हो?
1: मेरे साथ भी एक वाकया ऐसा ही हुआ
0: जी इरशाद,
1: बम्बई का जिक्र है। हाँ साहब, रजब अली खान दिवास वाले
0: जी हाँ,
1: बहुत तैयार गाते थे और बड़े अच्छा बहुत अच्छा गाते थे, मगर आदत ये थी कि तबलिए को चढ़ा देते थे और बराबर की फिरत फिर रहे हैं।
0: अच्छा,
1: तो अब सबकी ये सलाह हुई, कई तबलिए बदल गए दो
0: जी।
1: तो सबकी सलाह हुई भाई थिरकवा को
0: अच्छा
1: बिठाओ, तो इनकी तरकीब क्या थी, यहाँ फिर रहे हैं।
0: अच्छा,
1: तो अब तबलिए को तो मुश्किल है, चार घंटे वहाँ ही टंगा रहे
0: जी।
1: मुझे सिर हो के सबने बिठाया, तो मैंने क्या तरकीब जो टेटे दादा टेटे दादा तू ना था टेटे दा टेटे दादा टेटे दा, उनकी जो फिलत थी उसमें घुस गया
0: जी हाँ।
1: उनकी तरकीब बजाने लगा जो इस अंक चले वो
0: बहुत,
1: तो मैंने कहा सुबह तक तो थकूंगा नहीं खान साहब,
0: बहुत खुश हुए,
1: बहुत खुश हुए
0: जी हाँ। अच्छा, और कोई ऐसा
1: सब लोग खुश हुए महफिल की,
0: महफिल बहुत अच्छा हुआ। और कोई ऐसा वाकया याद हो
1: खान साहब? छज्जू खान नजीर खान बिंदी बाजार वाले
0: जी हाँ जी,
1: वो अपने ही थे हमारे
0: जी,
1: और बड़े कस्बी लोग थे
0: जी,
1: बड़े नामी गाते थे। उनके साथ मेरे मामू थे फयाज खान, वो बजाते थे।
0: अच्छा,
1: तो उनके साथ ये देखा कि मिजाज गवैये का नहीं बिगड़ता था
0: जी,
1: और अपनी भी काम सुना रहे हैं और उनकी भी सुनना है,
0: क्या कहें,
1: और पब्लिक को भी अच्छा मालूम हो रहा है, ये रंग देखे और संगत साथ का मजा ये है
0: जी हाँ। सही कहते हैं आप। अच्छा उस्ताद, अब कुछ तबले के ढंग के बारे में, यानी कि तबला कैसे सीखा जाए या क्या उसका हाथ कैसे रखा जाए या क्या, ये तो आप ही बता सकते हैं, आप बुजुर्ग हैं, अब अगर इस सिलसिले में अगर आप कुछ बताएं तो बड़ा
1: बेहतर साबित होगा। बेहतर भाई, पहले तो हाथ ही रखाना, बच्चे का हाथ ही रखाना है
0: जी।
1: बहुत से तब ऐसा हाथ रखाते हैं कि बीच की उंगली उंगली पर चढ़ा देते हैं तो वो सुर बंद हो गया, एक सुर का तो बाजा है, जब इसकी लाव बंद हो गई तो किस काम बजा है।
0: बिल्कुल दुरुस्त फरमाते
1: हैं, नहीं चाहिए अब ऐसा, उठी रहती है उंगली
0: जी,
1: बीच की उंगली जो है तो बराबर की उंगली से ऊपर होनी चाहिए।
0: जैसे बंद कैसे हो जाएगी, खुली कैसे, जैसे मिसाल के तौर पर अगर तबले
1: बंद यूं हो जाएगी जब उंगली चढ़ जाएगी
0: जी हाँ,
1: और जो उंगली उठी जाएगी ये तरकीब है।
0: अच्छा, और
1: फिर तबला बायां
0: जी हाँ
1: एक होना चाहिए
0: जी।
1: तबला कुछ कह रहा बायां कुछ कह रहा वो ठीक नहीं
0: जी,
1: उसमें मजा कभी नहीं आ सकता ना वो तैयारी पे पहुंच सकता। कायदा इसका यह है, जैसा वजन है बोल का
0: जी हाँ,
1: इसी तरकीब से जाए और बायां तबला एक होके जाए, ये ना हो कि अलग अलग बोल लिया वो कुछ कह रहा तबला कुछ कह रहा, तो वो समझ में ना पब्लिक की आए ना सुनने वालों की आए ना अपने
0: क्या कहने। और तबले के बोल भी तबले के बोल होने चाहिए
1: और असली बोल होने चाहिए, ना ताशा हो ना खंजरी हो ना ढोल हो ना कोई चीज गैर ना हो तबले से,
0: वो
1: तबले के बोल
0: होने।
1: और तो वो किन से मिलेगा
0: जी हाँ,
1: जिन्होंने बुजुर्गों से सीखा
0: जी हाँ,
1: और वो देख के उनको से सीखे
0: जी हाँ,
1: तो बढ़ने की सूरत है
0: जी हाँ, बिल्कुल आप सही।
1: और करनी
0: करना रियाज करना
1: जी हाँ।
0: बहरहाल साथ क्या कहूँ, बहुत खुशी हुई आपसे इस वक्त मुलाकात करके और आपने बहुत ही फायदे की बातें बताई, और
1: मेहरबानी।
2: In the special program of Great Masters of Indian Music, you were listening to an interview with Ahmad Jan Tirakwa. Interviewer was Mujahid Niazi. This program is a contribution of Central Archives of All India Radio, New Delhi, compiled at Akashavani Bengaluru for Ragam 24/7 Indian Classical Music Channel.

0: 24/7 DTH इंडियन क्लासिकल म्यूजिक चैनल।
1: यह है रागम DTH चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आइए सुनते हैं पंडित राजेंद्र अंतरकर का तबला वादन। उन्हें हारमोनियम पर लहरा संगति कर रहे हैं अतुल फड़के। प्रस्तुत है ताल तीन ताल। दिस इज रागम DTH चैनल, एनी टाइम इंडियन म्यूजिक। In the program of Hindustani classical music, we present Tabla recital by Pandit Rajendra Antarkar. He is accompanied on harmonium for Lehra by Atul Phadke. Pandit Rajendra Antarkar presents Taal Teen Taal.

ये था ताल तीन ताल। पंडित राजेंद्र अंतरकर अब प्रस्तुत करते हैं ताल पंचम सवारी। दैट वॉज ताल तीन ताल। पंडित राजेंद्र अंतरकर नाउ प्रेजेंट ताल पंचम सवारी।

ये था ताल पंचम सवारी। पंडित राजेंद्र अंतरकर अब प्रस्तुत करते हैं ताल द्रुत तीन ताल। दैट वॉज ताल पंचम सवारी। पंडित राजेंद्र अंतरकर कंक्लूड्स हिज तबला रिसाइटल विद ताल द्रुत तीन ताल।

धगत तगड़े धिन ताक धान ताक धिकड़े धागड़े धिकड़े धकार तगड़े धगड़े धाक ताक धीना के ना धीन धिकड़े धागड़े धिकड़े धीना के ना धीन धिकड़े धागड़े धिकड़े धागड़े धिकड़े धागड़े धिकड़े धागड़े धिकड़े धागड़े धिकड़े धागड़े धिकड़े धागड़े धिकड़े धागड़े धिकड़े धागड़े धिकड़े धागड़े धिकड़े धागड़े धिकड़े धागड़े धिकड़े धागड़े धिकड़े धागड़े धिकड़े धागड़े धिकड़े धागड़े धिकड़े धागड़े धिकड़े धागड़े धिकड़े धागड़े धिकड़े धागड़े धिकड़े धागड़े धिकड़े धागड़े धिकड़े धागड़े धिकड़े धागड़े धिकड़े धागड़े धिकड़े धागड़े धिकड़े धागड़े धिकड़े धागड़े धिकड़े धागड़े धिकड़े धागड़े धिकड़े धागड़े धिकड़े धागड़े धिकड़े धागड़े धिकड़े धागड़े धिकड़े धागड़

धिनाकृत धिनाकृत धिनाकृत धिनाकृत धिनाकृत धिनाकृत धिनाकृत धिनाकृत धिनाकृत धिनाकृत धिनाकृत धिनाकृत धिनाकृत धिनाकृत धिनाकृत धिनाकृत धिनाकृत धिनाकृत धिनाकृत धिनाकृत धिनाकृत धिनाकृत धिनाकृत धिनाकृत धिनाकृत धिनाकृत धिनाकृत धिनाकृत धिनाकृत धिनाकृत धिनाकृत धिनाकृत धिनाकृत धिनाकृत धिनाकृत धिनाकृत धिनाकृत धिनाकृत धिनाकृत धिनाकृत धिनाकृत धिनाकृत धिनाकृत धिनाकृत धिनाकृत धिनाकृत धिनाकृत धिनाकृत धिनाकृत धिनाकृत धिनाकृत धिनाकृत धिनाकृत धिनाकृत

ये था ताल द्रुत तीन ताल। आप सुन रहे थे पंडित राजेंद्र अंतरकर का तबला वादन। उन्हें हारमोनियम पर लहरा संगति कर रहे थे अतुल फड़के। ये आकाशवाणी मुंबई की प्रस्तुति थी। ये है रागम डीटीएच चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत। दैट वॉज ताल द्रुत तीन ताल। यू आर लिसनिंग टू तबला रिसाइटल बाय पंडित राजेंद्र अंतरकर। He was accompanied on harmonium for Lehra by Atul Phadke. This was a contribution by All India Radio Mumbai. This is Ragam DTH channel. Anytime Indian music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत लीजिए प्रस्तुत है सर्वप्रथम भैरव ध्रुपद, तदुपरांत जौनपुरी धमार. कलाकार हैं सुमोना गुप्ता. आपके साथ पखवास पर हैं प्रबालनाथ और हारमोनियम संगी हैं कमलाखा मुखोपाध्याय.
2: This is Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music. This morning we present a Hindustani vocal recital followed by a Hindustani instrumental recital. Listen first to Bhairav Dhrupad followed by Dhamar in Jaunpuri. Our artist is Shumona Gupto. Accompanying our artist on the pakhavaj is Probal Nath and on the harmonium is Kamalakho Mukhopadhyay.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप सर्वप्रथम भैरव ध्रुपद तदुपरांत जौनपुरी धमार सुन रहे थे। कलाकार थी सुमोना गुप्ता। आपके साथ पखवास पर संगीत है प्रबालनाथ और हारमोनियम संगीत है कमलाखा मुखोपाध्याय। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम को जारी रखते हुए लीजिए प्रस्तुत है राग अहिरी पर सितार वादन। कलाकार हैं रीना श्रीवास्तव। आपके साथ तबले पर हैं अभिषेक चट्टोपाध्याय।
1: You were listening to Bhairav Dhrupad, followed by Dhamar in Jaunpuri. Our artist was Sumona Gupta. Accompanying our artist on the Pakhavaj was Prabal Nath, and on the harmonium was Komalakho Mukhopadhyay. This is Ragam 24/7 on DTH, anytime Indian music. Continuing the concert, we now present a sitar recital

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग अहिरी पर सितार वादन सुन रहे थे। कलाकार थी रीना श्रीवास्तव। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे अभिषेक चट्टोपाध्याय। ये आकाशवाणी कोलकाता केंद्र की भेंट थी। यह रागम 2400 घंटे 7 दिन उपलब्ध है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: You were listening to a sitar recital in the rag Ahiri. Our artist was Reena Srivastava. Accompanying our artist on the tabla was Abhishek Chattopadhyay. This program was earlier recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में प्रस्तुत है संतूर वादन. कलाकार है श्री सिद्धनाथ मिश्रा. सबसे पहले आप बजाएंगे राग बसंत मुखारी. विलंबित एवं द्रुत दोनों रचनाएं तीन ताल में निबद्ध है. आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं सनी न्याजी. इन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक टुडे वी आर प्रेजेंटिंग संतूर रिसाइटल बाय श्री सिद्धनाथ मिश्रा. फर्स्टली He is presenting Raag Basant Mukhari. Both the compositions are set to Teen Taal. Accompanying him on tabla, Sunny Niazi.

ये है रागम 24 घंटे सातों दिन अनवरत भारतीय संगीत। अभी आप सुन रहे थे श्री सिद्धनाथ मिश्रा का बजाया संतूर पर राग बसंत मुखारी। आइए अब सुनते हैं इन्हीं का बजाया राग चारुकेशी। तबले पर संगति दी है सनी नियाजी ने। विलंबित एवं द्रुत दोनों रचनाएं तीन ताल पर निबद्ध है। दिस इज रागम 24/7 DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक। यू आर लिसनिंग राग बसंत मुखारी बाई सिद्धनाथ मिश्र। नाउ ही इज गोइंग टू प्रेजेंट राग चारुकेशी अकॉम्पनिंग हिम ऑन तबला सनी। Both the compositions set to Tintal.

ये है रागम 24 घंटे सातों दिन अनवरत भारतीय संगीत। अभी आप सुन रहे थे श्री सिद्धनाथ मिश्रा का बजाया संतूर पर राग चारुकेशी। दिस इज रागम 24/7 DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक। नाउ यू आर लिसनिंग राग चारुकेशी बाय श्री सिद्धनाथ मिश्रा। अब आपके सामने प्रस्तुत है पंडित राज खुशी राम का बजाया पखावज पर मोहन ताल। सारंगी पर संगत कर रहे हैं विनोद कुमार मिश्र। नाउ वी आर गोइंग टू प्रेजेंट पखावज वादन बाय पंडित राज खुशी राम। ही इज प्रेजेंटिंग मोहन ताल एंड अकॉम्पनिंग हिम ऑन सारंगी विनोद कुमार मिश्र।

शतरंगी वर्णन प्रस्तुत है। इसमें 6 प्रकार की लयों का वर्णन किया गया है। टिट कत ग ही ग धा तिट धा तिट धा धा तिट किट धा तिट धा धान धिकिट तक धिकिट तधिकिट तगिन धा तगिट तक तक धगिट दग दिन धगिट दग दिन धगिन धा किट तक दिगन न किट तक तक थुकिट तक धाधिकिट धिकिट तक धा धान धिकिट तकिट थुकिट तकिट थुकिट दिगन लान धकिट दान ंदा तिरगड़ता तिरगड़ता तिरगड़ता तिरगड़ता तिरगड़ता तिरगड़ता तिरगड़ता तिरगड़ता तिरगड़ता तिरगड़ता तिरगड़ता तिरगड़ता तिरगड़ता तिरगड़ता तिरगड़ता तिरगड़ता तिरगड़ता तिरगड़ता तिरगड़ता तिरगड़ता तिरगड़ता तिरगड़ता तिरगड़ता तिरगड़ता तिरगड़ता तिरगड़ता तिरगड़ता तिरगड़ता तिरगड़ता तिरगड़ता तिरगड़ता तिरगड़ता तिरगड़ता तिरगड़ता तिरगड़ता तिरगड़ता तिरगड़ता तिरगड़ता तिरगड़ता तिरगड़ता तिरगड़ता तिरगड़ता तिरगड़ता तिरगड़ता तिरगड़ता तिरगड़ता तिरगड़ता तिरग

प्रस्तुत है नव दुर्गा परन। इसमें नौ देवियों के नाम आए हैं और गुरु कृपा से ये स्वनिर्मित है। दुर्गे दुर्ग तिहारणी माता दिधान तान धाता शैल पुत्री जय ब्रह्मचारिणी दर्प दलनी त्रयताप हारणी गदगणधा धा गदगणधा धा गदगणधा धा चंद्र घंटा घनन घनन घन घनात घनन घन कुष्मांडा गदिन धान धान धा स्कंद मात जय कात्यायनी काल रात्रि जय कान त्रिकृत तक धागृत धूमकृत ग्लान त्रिकृत तक कान कान त्रिकृत तक तकान महागौरी जय सिद्धिदात्री अणिमाधा महिमाधा लघिमाधा त्रिकृत कत ईशत्वधा वैश्वत्वधा प्रकाम्य प्राप्त अंतरमितत्वधा धाधा पुंगी फल तांबूल लवंग ध्वज कुमकुम अक्षत प्रसून श्रीफल कपूर करधर राज नमत जय नव दुर्गे शंख नाद दिग दिग दिगंत में मृदंग करत गुंजार धाधन जय बा जय ओम मैं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः धा धा धा धा धा धा

अभी आप सुन रहे थे पंडित राज खुशी राम का बजाया पखावज पर मोहन ताल। यह कार्यक्रम आप तक पहुंचा आकाशवाणी लखनऊ के सौजन्य से। नाउ यू आर लिसनिंग मोहन ताल ऑन पखावज बाई पंडित राज खुशी राम। दिस प्रोग्राम वॉज कंट्रीब्यूटेड बाई ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत. अब आप सुनेंगे हिंदुस्तानी शैली में सितार वादन. कलाकार हैं पंडित देवव्रत चौधरी. राग है कोमल ऋषभ आसावरी. आप प्रस्तुत कर रहे हैं आलाप और विलंबित गत. विलंबित गत 3 ताल में निबद्ध है. दिस इज रागम 24/7 एन एक्सक्लूसिव इंडियन क्लासिकल म्यूजिक चैनल. नाउ लिसन टू अ हिंदुस्तानी सितार रेसाइटल बाय पंडित देवव्रत चौधरी. द रेंडेशन कमेंस विद द राग कोमल ऋषभ आसावरी.

अब आप सुनेंगे राग रागेश्री। आप प्रस्तुत कर रहे हैं रागेश्री में आलाप और दो गतें, जो क्रमशः तीन ताल में निबद्ध हैं। कलाकार हैं पंडित देवव्रत चौधरी। नाउ लिसन टू राग रागेश्री बाय पंडित देवव्रत चौधरी।

आप सुन रहे हैं सितार वादन, कलाकार हैं पंडित देवव्रत चौधरी। यू आर लिसनिंग हिंदुस्तानी सितार रेसाइटल बाय पंडित देवव्रत चौधरी। ये है रागम पर हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब हम आपको सुनवा रहे हैं पंडित देवव्रत चौधरी से राग भैरवी में एक धुन। नाउ द आर्टिस्ट रेंडर्स भैरवी धुन।

अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी शैली में सितार वादन। कलाकार थे पंडित देवव्रत चौधरी। हर पल हर समय रागम के लिए ये थी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र की भेंट। यू आर लिसनिंग टू हिंदुस्तानी सितार रिसाइटल बाय पंडित देवव्रत चौधरी। दिस प्रोग्राम वॉज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ऑल इंडिया रेडियो भोपाल फॉर रागम 24/7 एंड एक्सक्लूसिव इंडियन क्लासिकल म्यूजिक चैनल।

0: 247 DTH इंडियन क्लासिकल म्यूजिक चैनल।
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है। प्रस्तुत है विदुषी सुलोचना बृहस्पति का गाया राग शिवमत ब्रो। तबले पर आपकी संगति की है विनोद पाठक ने और सारंगी पर पंडित भारत भूषण गोस्वामी ने।
2: दिस इज द रागम चैनल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। वी नाउ प्रेजेंट अ वोकल रेंडिशन बाय विदुषी सुलोचना बृहस्पति। फर्स्ट लिसन टू राग शिवमत भैरव। She is accompanied by Vinod Pathak on tabla and Pandit Bharat Bhushan Goswami sarangi।

0: अभी आप विदुषी सुलोचना बृहस्पति का गाया राग शिवमत भैरव सुन रहे थे और लीजिए अब सुनिए राग हिंडोल। तबले पर आपकी संगति की है विनोद पाठक ने और सारंगर पंडित भारत भूषण गोस्वामी ने।
1: यू लिसनिंग टू अ वोकल रेंडिशन इन राग शिवमत भैरव बाय विदुषी सुलोचना बृहस्पति। She was accompanied by Vinod Pathak on tabla and Pandit Bharat Bhushan Goswami on sarangi. Now listen to Rag Hindol.

0: अभी आप विदुषी सुलोचना बृहस्पति का गाया राग हिंडोल सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी विनोद पाठक ने और सारंगी पर पंडित भारत भूषण गोस्वामी ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: यू वर लिसनिंग टू अ वोकल रेंडिशन इन राग हिंडोल बाय विदुषी सुलोचना बृहस्पति। शी वॉज अकम्पनीड बाय विनोद पाठक ऑन तबला एंड पंडित भारत भूषण गोस्वामी ऑन सारंगी। दिस प्रोग्राम इज द प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी भक्ति संगीत। श्रोताओं, भक्ति संगीत के आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे कुछ भजन और श्यामा संगीत। आज के कलाकार हैं नंदिनी भट्टाचार्य, नवनीता बसु, विश्वनाथ चंदो, सौरव मायती और नमिता भट्टाचार्य। आज के भक्ति संगीत के इस कार्यक्रम का प्रारंभ हम भजन से करने जा रहे हैं। कलाकार हैं नंदिनी भट्टाचार्य। तो ये सुनते हैं नंदिनी भट्टाचार्य से ये भजन।
2: This is Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music. We present devotional songs. We begin the program with Meera Bhajan followed by a Kabir Bhajan. Our artist is Nandini Bhattacharya. Listen now to Meera and Kabir Bhajans. Our artist Nandini Bhattacharya.

0: अभी आप नंदिनी भट्टाचार्य से ये भजन सुन रहे थे। आइए आप सुनवाते हैं एक और भजन। कलाकार हैं नवनीता बासु। तो लीजिए सुनिए नवनीता बासु का गाया ये भजन।
1: यू वर लिसनिंग टू मीरा एंड कबीर भजन्स। आवर आर्टिस्ट वॉज नंदिनी भट्टाचार्य। दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक। Listen now to a Kabir bhajan by our artist, Nabonita Basu.

0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हिंदुस्तानी भक्ति संगीत का कार्यक्रम। भक्ति संगीत के इस कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं श्यामा संगीत। इस श्यामा संगीत के गायक कलाकार हैं विश्वनाथ चंदो। तो आइए सुनते हैं विश्वनाथ चंदो से श्यामा संगीत।
1: यू वर लिसनिंग टू कबीर भजन बाय आवर आर्टिस्ट नोबोनीता बासु। दिस इज रागम 24/7 on DTH, anytime Indian music. Continuing the program, we now present Shyama Sangeet. Listen to Shyama Sangeet. Our artist is Bishwanath Chandok.

0: अभी आप श्यामा संगीत सुन रहे थे। कलाकार थे विश्वनाथ चंदो। श्यामा संगीत का ये क्रम जारी रखते हुए अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं सौरव मायती का गाया हुआ ये श्यामा संगीत।
1: यू वर लिसनिंग टू श्यामा संगीत बाय आवर आर्टिस्ट विश्वनाथ चंदो। दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक। वी नाउ प्रेजेंट श्यामा संगीत बाय आवर आर्टिस्ट सौरव मायती।